0: Swapping plastic sims, no kiosks.
1: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
2: Exclusive radio partner, Like Radio.
3: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
4: Leica Radio.
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा।
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
7: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
5: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Safo Travel, auto protected.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network, soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Mid-

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच्छ

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: जी टीवी HD पर।
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
2: हो अपनी माँ को बोलो, मैं लेकर आऊंगा।
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो
3: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
4: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
6: Breakfast with Deep Raja. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रफी साहब की आवाज में, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अपने जमाने का सुपरहिट गाना, जिसे लिया था फिल्म आशा से जो आई थी 1980 में। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए स्टूडियो में हाजिर है, और ये साथ चलता रहेगा आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। मौसम काफी गर्मा गर्म है एंड आई एम श्योर आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, या फिर हमारे कुछ साथी कह रहे होंगे हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी। तो उनको बता दूं कि ये जो आने वाला वीक है ना, ये और भी ज्यादा गर्मा गर्म है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आपके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए हम है ना आपके साथ 24 घंटे सातों दिन। बस आप साथ देते रहिए प्रोग्राम में, जैसे हमेशा खूबसूरत गीत बजते हैं आज भी बजते रहेंगे, और आज कुछ खास भी है। क्या खास है बताऊंगी आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें कि आज भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं तो 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और जून से पहले पहले, जिसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं, आप 75 pound का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे जब आप 1000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pound। टर्म्स एंड conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बताते चलें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो मैचेस होने वाले हैं, उनमें पहला मैच है बेल्जियम और ईरान के बीच में, उसके अलावा आज स्पेन और सऊदी अरबिया की टीम भी भिड़ेंगी। लेकिन याद दिला दें कि आपको रैक लॉ सॉलिसिटर से 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस मिल सकता है जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Yeah. Like our radio.

0: श्रीदेवी और ज्वाली मुखर्जी की आवाजें 1989 की फिल्म चांदनी से लिया था ये गाना, शिवहरि का म्यूजिक और यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म जिसे आप सभी ने पसंद किया है। और लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आज है संडे का दिन, 21 जून है आज, और आज हमारे बहुत सारे साथी यानी यूके वासी सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। यस, तो फादर्स डे की आपको ढेरों ढेरों बधाइयां। और बस यही कहूंगी कि कभी भी किसी के भी सर से फादर पिता का साया उठना नहीं चाहिए, क्योंकि फादर एक ऐसी चीज होती है जो हर किसी के जीवन में बहुत जरूरी है। देखिए, किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हर मुश्किल में हौसला बढ़ाया, अपने दुखों को छुपाकर सदा पापा ने हमें हंसना सिखाया। और पापा ही एक ऐसी चीज होती है जो कभी अपने बारे में नहीं, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो आज हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इसी के चलते हम यहाँ से मिठाइयाँ बांटने वाले हैं। यस, अंबाला के साथ मिलकर लाइका रेडियो नेटवर्क आपको इस आवर में नहीं, सेकंड आवर में नहीं, मतलब तीनों आवर में मिठाई के डब्बे बांटेंगे और फादर्स डे की खुशी को हम दोगुना करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली फादर लिखकर हमारे स्टूडियो व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। अगर आप जीतते हैं तो आपका नाम मैं अनाउंस करूंगी, आपको मिलेगी एक मिक्स मिठाई का डिब्बा। और वो सेट है, कौन सी मिठाई आपको मिलेगी, अगर आप चाहें कि मिठाई बदल जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल, मिठाई आपको वही मिलेगी जो ऑलरेडी प्री सेलेक्टेड है। तो फटाफट कीजिए और हमें भेज दीजिए लिखकर अंबाला हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719.
1: तो आपको बता दें कि प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन में हम फादर्स डे के उपलक्ष्य में आपको मिठाई का डब्बा देने जा रहे हैं। लाइका टीम अंबाला के साथ मिलकर ये मिठाइयां आपको बांटने वाली है, तो जल्दी से फादर वर्ड लिखिए और भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। आई रिपीट वंस अगेन,
0: ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क। दिस इज रितु शर्मा।

0: प्यार है तो फिर।
1: यस, आज फादर्स डे है और इसीलिए हमने सभी फादर्स को ये गाना डेडिकेट किया। और इसके अलावा जासू जी कहती है, ऋतु ये गाना मेरे नाम पर भी कर दो। चलिए, मैंने ये गाना आपको भी दिया। महेंद्र बजारिया जी, आपको भी ये गीत पसंद है और जिन भी साथियों को ये गीत पसंद है, सभी के नाम पर जाता है ये गाना। और इस आवर में कॉम्पिटिशन चल रहा है और विनर कौन बने हैं, जिन्हें मिल रहा है मिठाई का डिब्बा, उनका नाम मैं बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में।
2: हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो व्हेन आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स।
1: तो करेंसी अपडेट में आपको बताते चलें कि आज

0: आयशा जी की आवाज में वक्त फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले जसपाल सिंह की आवाज में गीत गाता चल साथी गुनगुनाता चल। प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, सेकंड आवर की शुरुआत हुई है इन दो गीतों के साथ, और इसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। संडे को सेकंड आवर में हम सुनते हैं जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी है जूही चावला और आमिर खान की जोड़ी, जिनके दो गाने बस सबसे थोड़ी देर में बजाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कुकी बनी है हमारे फर्स्ट वाले आवर के कंपटीशन की विनर, और आपको बता दें कि आपको ये मिठाई जो हमने आपको दी है अंबाला की ओर से, अपने नियरेस्ट अंबाला स्टोर पर जाकर खुद कलेक्ट करनी होगी, ठीक है? तो बस आप जल्द से जल्द चले जाइए और लेकर आइए। और जो कंपटीशन नहीं जीते हैं उनको बता दूं कि लास्ट एंड फाइनल आवर में भी अंबाला का कंपटीशन होगा, और आपको मिलेगा मौका जीतने का मिठाई का बॉक्स। कुकी कहती है कि मैंने पहली बार कुछ जीता है, और देखिए आपने पहली बार कुछ जीता है और वो भी एक मिठाई का बॉक्स, वो भी अंबाला से, क्या बात है। वैसे ही आपका नाम इतना मीठा है और मिठाई खाएंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू साथ देने के लिए। और इस वाले आवर में भी एक कॉम्पिटिशन है, और वो क्या है उसके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज आपको 1 pound के बदले में मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आपको याद दिला दें कि आप 75 pounds का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे जून से पहले पहले जब आप पैसा भिजवाते हैं 1000 pounds से ज्यादा, एंड ऑल्सो 1 gold coin एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज स्पेन और सऊदी अरबिया के बीच में मैच होगा, ट्यूनिशिया और जापान की टीमें भिड़ेंगी, और इसके साथ साथ आज बेल्जियम और ईरान की टीमों के बीच में भी मैच होगा। लेकिन आपको फ़ायदा मिल सकता है कैसे, अगर आपकी कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी बारे में लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप रैक लॉ सॉलिसिटर से 15 minutes फ्री में बात कर सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE1-2JU, या Rowlett Hill, LE5-4UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। That's 8574 8410.
9: Savo Travel, auto protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed this see Panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
13: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.com. co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
14: ZTV HD par dekhiye ek anokhi pyar ki dastaan. Miliye 46 saal ke business tycoon Aryavardhan aur 19 saal ki pyari si Anu se.
15: Tumhe mujh par bharosa nahi?
16: Khud se bhi zyada.
14: Jinhein taqdeer chupke se bandh rahi hai ek anjaane rishte mein.
16: Jo baat mere dil mein wahi baat Arya sir ke dil mein bhi hai.
14: Kya ye nazdeekiyan badal degi unki kismat ki rekha? Dekhiye Tumse Tum Tak har raat 8 baje ZTV HD par. Available on Sky 7 Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
17: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
18: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
19: Okay, help's on its way.
20: Grab my hand!
21: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
22: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: खबर का। जी हाँ, ये है हमारी आज की जोड़ी नंबर वन। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में जूही चावला और आमिर खान पर पिक्चराइज था ये गाना, जिसे आपने सुना और अभी सुनवाऊंगी दूसरा गाना। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के कंपटीशन की। और ये कंपटीशन है एक गुजराती शो के बारे में, जिसे हमने कल भी चलाया था। लाइका रेडियो नेटवर्क जेज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका दे रहे हैं दो टिकट्स जीतने का, एक गुजराती स्टेज कॉमेडी जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। और ये फ्राइडे 26 जून को होने जा रहा है 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली लंदन में। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है हस्बैंड, लिखकर भेजिए हस्बैंड। और इस वाले आवर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन है वो लकी विनर जिन्हें दो टिकट्स जीतने का मौका मिलेगा और इस गुजराती प्ले को देखने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से हस्बैंड लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपना टेलीफोन नंबर लिखकर और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लीजिए हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का ये दूसरा गाना, जिसे लिया था फिल्म इश्क से उदित नारायण और विभास शर्मा की आवाज है। और आपका मैसेज आया है सुनील जी, कहते हैं जोड़ी नंबर वन का एक और गीत आप सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो गाना आज के प्रोग्राम में आपको सुना सकूं, क्योंकि नॉर्मली जोड़ी नंबर वन में मैं दो ही गाने बजाती हूं। लेकिन आपको बता दें कि कल से रवि शर्मा जी के शो में मंडे टू फ्राइडे, कल पूरा वीक और नेक्स्ट पूरा वीक, यानी कि दो वीक मैं आपके साथ रहूंगी। तो यानी आज से जो हमारा साथ शुरू होगा वो पूरे दो वीक तक चलेगा, क्योंकि रवि शर्मा जी छुट्टी पर जा रहे हैं, हॉलिडे मनाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मजे से घूम कर आए, उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए। तो वो दो वीक बाद लौट कर आएंगे और इन दो वीक में मैं ऋतु शर्मा आपके साथ रहूंगी। तो ये जो गाना आप आज सुनना चाहते हैं कल सुना दूंगी तो चलेगा? आज के शो में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, और देखिए इसीलिए आज मैं आपके मैसेजेस भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि जब मैं स्टूडियो में आई तो मुझे एक इश्यू मिल गया। अब यहाँ इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, तो कभी हमेशा अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभार कुछ हो जाता है। तो जब यहाँ आई तो जो इश्यू था उसमें मेरा सारा दिमाग लग गया, तो मुझे समय ही नहीं मिला उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपके मैसेजेस पढ़ने का। तो इसलिए आज आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपका साथ मुझे भरपूर मिल रहा है हमेशा की तरह। आई एम श्योर आप माइंड नहीं करेंगे आज के लिए, है ना? थैंक यू। और आपको बता दें कि प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन चल रहा है, ढेर सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं, और विनर कौन बनेंगे मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन आज इंटरनेशनल योगा डे है, हमारे पंडित आपका नाम भूल गई, देखो कितनी मैं भुलक्कड़ हो रही हूँ आज। जल्दी से मैसेज लिख के भेजिए आपका नाम क्या है। पंडित ज्योति प्रकाश दुबे जी, यस आपने हमें याद दिलाया है। और वैसे हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, और इस बार आज का जो है वो 12वां इंटरनेशनल योग दिवस है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 कंट्रीज का समर्थन मिला, और तब से लेकर आज तक हर साल 21 जून के दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और ये बहुत अच्छा है, योगा से अच्छा कुछ भी नहीं, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको मेंटल पीस देता है, बहुत फायदे हैं इसके। अगर आपने अभी तक योगा नहीं किया है तो आज से ही शुरू कीजिए। रोज 5 मिनट या 10 मिनट 24 घंटे में से आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। दुनिया में जानते हैं सबसे कीमती चीज क्या है? आपका अपना शरीर। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप कितने भी अरबों के खरबों के मालिक हों, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे काम काज को एक तरफ रखकर दुनिया की सबसे अनमोल चीज का ख्याल रखिए। आप सोना चांदी रुपया पैसा कैसा संभाल के रखते हैं, लेकिन ये जो बॉडी आपको भगवान ने दी है ना बिल्कुल मुफ्त में, उसका ध्यान ही नहीं रखते। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि अपना ख्याल रखने के लिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15-20 जैसी आपकी श्रद्धा योगा करना शुरू करेंगे, फिर देखिए आप अच्छा फील करेंगे। और मुझे बताइए कि आज के दिन से किसने शुरुआत की, कल आप सबसे पूछूंगी। लेकिन फिलहाल बढ़ जाते हैं आगे।
1: दिस इज रितु शर्मा। नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: पॉडकास्ट अपडेट। तो बिल्कुल लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ चुका है, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने, और इस बार का टॉपिक है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। अच्छा टॉपिक है। कल हम एक चैरिटी इवेंट में गए थे, वहां पर मिताली राज आई थी जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही है, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई कि क्या डिफरेंस होता है मेल स्पोर्ट्समैन में और फीमेल स्पोर्ट्समैन में। तो अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर, अच्छा लगा उनसे मिलकर, और आप भी इस बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुनिए, ये अवेलेबल है यूट्यूब पर, अमेजन पर, स्पॉटिफाई पर, और जितने भी स्ट्रीमिंग लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह आपको मिल जाएगा।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Welcome to the jungle.
3: Film bilkul fake.
5: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
5: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में.
10: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
12: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
14: Be part of a historic grand opening.
15: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
17: Punjab, the biggest tunes.

0: जब हम मोहम्मद रफी साहब को देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं तो सब कहते हैं कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, लेकिन जब इस तरह के गाने सुनते हैं जिसमें होती है इतनी शरारत, तो मैं ये सोचती हूँ कि इतना सीधा साधा आदमी गाने में इतनी शरारत कैसे डाल सकता है। लेकिन फिर वही, यही तो कमाल होता है एक अच्छे और सच्चे कलाकार का। तो ये गाना आप सबने एंजॉय किया और अब मैं आपको बताती चलूं, चलिए थोड़ी ही देर में बताती हूँ कि आज के कंपटीशन का विनर कौन बनता है। रेडियो सेट्स के पास आ जाइए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: So gold rate is 101.05 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: तो आपको बताते चलें कि ये जो कंपटीशन चल रहा था जिसे जेज एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको देने वाले थे दो टिकट्स, सखना राख्यो हस्बैंड जी। इस कंपटीशन में हमारे ढेर सारे साथियों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो विनर बनी है उनका नाम है मीरा व्यास। आपको मिलते हैं दो टिकट्स और आप जा रही हैं इस शो को देखने के लिए। और आपको बता दें कि ये शो सिर्फ लंदन वेन्यू के लिए है, जो हो रहा है 27 पाटीदार समाज फैमिली में, और ये है फ्राइडे 26 को। और टिकट्स जो है वो आपको वेन्यू के रिसेप्शन से उसी दिन शाम को मिलेंगे जिस दिन ये शो है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मीरा, बधाइयां, मजे के साथ शो देख कर आइए और फिर हमें बताइए कि ये नाटक आपको कैसा लगा। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी है कंपटीशन जिसमें किन्हीं दो लोगों को मिलेंगे दो मिठाई के डिब्बे, और वो कौन होंगे उसको जानने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, और प्रोग्राम का लास्ट आवर भी सुनना पड़ेगा। तो चलिए साथ जरूर देते रहिए।
2: लाइका रेडियो।
3: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
4: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पांडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम 3,299 पाउंड्स पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846।
5: जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
6: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
7: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
8: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर।
9: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
8: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
5: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 and Z5 app.
10: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
11: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
10: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
11: Also explore 2026 cruises
10: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
12: Father son નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
13: અંકલ, તમે પહેલાથી આવા જ છો.
14: આવા એટલે કેવા?
12: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
14: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરત તું? બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે.
12: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
14: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: साधना जी की संजय खान की फिल्म एक फूल दो माली से था ये गाना। और उससे पहले आपने रफी साहब सुषमा श्रेष्ठा की आवाजों में हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत सुना। प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और इस आवर में हमेशा हम थ्री वर्स गेम खेलते हैं, लेकिन आज है कॉम्पिटिशन, इसलिए आज हम गेम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब से है थोड़ी ही देर में ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला जरूर शुरू होगा। और आज के कॉम्पिटिशन को शुरू करने से पहले आप सबको याद दिलाऊंगी कि आज साल का सबसे लंबा दिन है। जी हाँ, 21 जून है आज। और आज के बाद यानी कि कल से एक मिनट, दो दो मिनट थोड़ा थोड़ा करके दिन छोटे होने लगेंगे। लेकिन मौसम में गर्मी तो शायद इस पूरे वीक रहेगी, लेकिन आज के बाद से दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़कर बात कर लेते हैं आज के कॉम्पिटिशन की। फादर्स डे है आज, सभी को ढेरों बधाइयां, हैप्पी फादर्स डे। और इसी के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए लाइका रेडियो नेटवर्क अम्बाला के साथ मिलकर आपको देने जा रहे हैं एक मिक्स्ड मिठाई का बॉक्स। और आप हमारे हर शो में जीत सकते हैं। अगर मेरे शो में नहीं जीत पाए तो मुझसे जो अगले वाला शो होगा उसमें भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है फादर, बिकॉज इज फादर्स डे, तो फादर लिखना है। और हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर लिख, हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। और विनर का नाम मैं अनाउंस करूंगी इस वाले आवर के एंड में। और इस बार एक नहीं, दो लोगों को मिठाई के बॉक्स मिलेंगे, क्योंकि दो विनर मैं चूज करूंगी। और आपको वो मिठाई का बॉक्स खुद अपने घर के पास जो भी अम्बाला स्टोर है वहाँ से जाकर उसे लेना पड़ेगा। और आपको हमारे कोई लायका के जो मेंबर हैं वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कब से ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, कब आप जाकर वहाँ ले सकते हैं। तो बस फटाफट कीजिए, हमारे को भेज दीजिए अपना मैसेज जिस पे लिख दीजिए फादर और कर लीजिए कॉम्पिटिशन में एंट्री, जीतने का मौका पाइए एक मिठाई का डिब्बा फ्रॉम अम्बाला।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और जून के पहले पहले आपको मौका मिल सकता है एवरीडे 75 pounds का वाउचर जीतने का, जब आप 1000 pounds से ज्यादा मनी ट्रांसफर करते हैं। एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Ye hai Leica Radio.
2: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistance Street LE12JU या Rowlatt Hill LE54UN.
2: Big deals, big savings while stocks last.
4: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
4: हमारे film army वाली.
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: Danger एकदम real और survival skills zero.
4: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून।
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में?
3: 105 શોસ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
7: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
3: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સખણા રેજો હસબન્ડ જી
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: એક ઐતિહાસિક અને દિવ્ય અવસર પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે જ્યાં મળશે શાંતિ ભક્તિ અને આનંદ અને સાથે આઈફિલ ટાવર સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટુર નો આનંદ માણો ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ કોલ કરો 02037736333 મંત્રા હોલિડેઝ વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા
15: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
16: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
15: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
17: इट्स अ डॉग वॉक आई डू इट एवरी डे एट होम आई डोंट नीड टू प्लान इट चेक द टाइम चेक माय फोन व्हाई डोंट आई टेक माय
18: हे बॉय
19: Coast Guard, we're stuck.
20: Okay, help's on its way.
19: Hold on, mate.
21: Shoes tied. Phone.
22: Back before dark, love. Okay.
23: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
24: Hollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: यस, इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं हरी हरन, जिनकी आवाज में लम्हे फिल्म से था ये गाना। और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, कुछ देर बाद बताऊंगी कि कौन बने हैं आज के कंपटीशन के विनर, लेकिन उससे पहले शुरू करेंगे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाएंगे आपको पहला गाना।
1: ये है Leica Radio Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DerryValley.net.

0: क्या खूबसूरत गाना है लता जी की आवाज में। अनाड़ी फिल्म से लिया था ये गीत और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और देखते हैं कि आज इस कंपटीशन के कौन विनर बनते हैं।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: किन्हें मिलते हैं आज दो मिठाई के डिब्बे, क्योंकि इस वाले आवर में मैं दो विनर चूज करने वाली हूँ। तो रेडियो सेट्स के पास ही रहिए, बहुत जल्द बताऊंगी कि वो कौन है जिन्होंने जीता है आज के फादर्स डे वाला कॉम्पिटिशन।
1: दिस इज रितु शर्मा।
0: लेकिन फिलहाल आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: सपनों की तुम तस्वीर।
1: जी हाँ, ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और ये गाना मैंने आज बड़े दिनों बाद शो में शामिल किया है, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। तो बस थोड़ी ही देर में अनाउंस करने वाले हैं आज के कॉम्पिटिशन के विनर का नाम। आप हमारा साथ देते रहिए, ये है लाइक ऑन रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर ऋतु शर्मा है आपके साथ पूरे एक बजे तक।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ सोल ट्रैवल।
1: और आपको याद दिला दें कि समर का टाइम है, हॉलिडे जाना चाहते हैं तो एक ही नाम याद रखिए, साउथ सोल ट्रैवल। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर और अपने टिकट्स बुक कराइए। हॉलीडे डील्स आप बुक कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स, सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं।

0: यस, किशोर दा और लता जी की आवाजों में ये था अपने जमाने का सुपरहिट गाना और जिसे आप सबने पसंद किया है। सुबह से लेके अब तक आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं क्योंकि ढेर सारे कॉम्पिटिशन भी हैं प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगी कि आज का फादर्स डे वाला कॉम्पिटिशन किसने जीता है, तो तैयार है नाम जानने के लिए? चलिए बताती हूँ। हमारे आज के इस फादर्स डे वाले कॉम्पिटिशन के विनर बने हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है एक मिठाई का बॉक्स अंबाला स्वीट्स की ओर से, जिसे जीता है रोजी रजीना आपने एंड साथ में दिनेश पोपट जी आपने। दोनों को ढेरों बधाइयां, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मजे के साथ फादर्स डे मनाइए और हम आपको बताएंगे कि आप कब अंबाला जाकर अपना मिठाई का बॉक्स कलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने नियरेस्ट अंबाला स्टोर पर जाकर ये मिठाई का बॉक्स लेना होगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो आज नहीं जीते हैं, आपको बता दूं कि हर शो में ये कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, तो जरूर सुनिए हमारा लाइक और इंडियो नेटवर्क और कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। और बस आप सब जानते ही हैं कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कमल जी हमारे साथ हैं। हेलो कमल जी, बताइए।
3: रिचि जी गुड आफ्टरनून। पहले तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड। सो टू क्रिकेट नाउ, वी हैव टू अमेजिंग गेम्स गोइंग टुडे। पहले तो एक है श्रीलंका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। श्रीलंका वर रियली स्ट्रगलिंग टुडे, दे गॉट 98 रन इन 19.4 ओवर्स एंड नाउ वेस्ट इंडीज चेसिंग दैट and they are chasing very well at the moment, 30 for 1 in 5 overs. So, ye jo hai, it's going to be a tough day, a beautifully hot day. But second game we've got South Africa against India. Wo badi game hone wali hai. Aur maine ye dekha ke Leica ki team, aur aap bade sundar lag rahe the, Raj bhi, all the team, yesterday with some The ex-captain of India ladies team के साथ celebration कर रहे थे आप लोग।
0: जी बिल्कुल, thank you.
3: Thank you, have a good day. Bye.
0: Thanks, bye-bye.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 101.05 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: जी हाँ बिल्कुल, आप लाइका रेडियो नेटवर्क ही सुन रहे हैं और बस अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार गोल पर होंगी अनुराग, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी फजीला और लाइका रेडियो मैनचेस्टर लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आपका साथ देंगे नीरज। लेकिन मेरी आपसे मुलाकात कल फिर से होगी रवि शर्मा जी के शो में, क्योंकि रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर गए हैं, इसलिए उनके शो में मैं आपका साथ दिला दूंगी। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आप बैक टू बैक क्लासिक्स सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है हमारा लाइका गोल्ड टू। 90s के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमारे पास है आपके लिए लाइका रेडियो 90s। और अगर पंजाबी गीतों के शौकीन हैं तो आप सुन सकते हैं लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, एंड ऑफ कोर्स लाइका पॉडकास्ट भी है, लाइका एक्स्ट्रा। तो जब जी चाहे जो सुनिए, लेकिन हमें जरूर सुनते रहिए, जो भी आप चाहे, लाइका से दूर मत जाइए। बस कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए, एंड जो आज के कंपटीशन के विनर बने हैं उन सभी को वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।
1: हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM। लाइका रेडियो,
5: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफटाइम? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
9: सेलिब्रेट फादर्स डे ऑन संडे 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11-5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
13: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 02031299840.
1: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
14: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
15: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
14: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
15: दिल तो टूट पे किया,
14: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
16: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
14: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
17: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Next, Neeraj with Weekend Musty on Leica Radio. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: Basmati rice.
1: Free Disha rice tasting on the 20th and the 21st of June from 10 a.m. to 5 p.m. at Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN.
0: Disha Basmati rice.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
4: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
5: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW पेज को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 02031299840। TW पेज, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
6: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding, use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549.
7: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
10: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call. Dial 999.
11: LEMFI means quicker and safe way to send money.
12: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
11: LEMFI means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LAIKA.
12: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
13: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
8: LAIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
14: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
15: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
16: खुद से भी ज्यादा।
14: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
16: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
14: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
17: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
8: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

टेस्ट सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से, दिल का शिकार कर

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ इन दोनों गीतों को आपने पसंद भी किया। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और इस डे पर मैंने सोचा गीतों की बात ही क्यों ना हो, गीत वर्ड को मैंने चुन लिया और दो गीत आप तक पहुंचा दिए और बाकी के गीत भी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। जो पहले दो गीत मैंने शामिल किए वो किन फिल्मों से थे बता देती हूँ। ये पहला वाला गीत यस बॉस फिल्म से था, 1997 की फिल्म, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और दूसरा गीत अनुराधा पौडवाल एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में और ये गीत मैंने चुना था शेषनाग से। म्यूजिक क्या है आपके लिए, क्या मायने रखता है, मुझे बताएंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। म्यूजिक फॉर मी इज़ अ डेली कंपेनियन, माय प्रोफेशन एंड माय पैशन एज वेल। एज अ रेडियो प्रेजेंटर आई डोंट जस्ट प्ले म्यूजिक, मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं ऐसे ही कोई म्यूजिक नहीं प्ले करती हूँ। आई गेट टू शेयर मोमेंट्स, मेमोरीज एंड इमोशंस इन एवरी सॉन्ग। एंड मैं हमेशा आपसे पूछती रहती हूँ कौन सी याद आपकी जुड़ी है गीतों के साथ। संगीत की कोई भाषा तो नहीं होती है, संगीत संगीत ही है। जिस भी कंट्री में चले जाएं वहाँ का संगीत उनके लिए बहुत मायने रखता है, हमारे लिए हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक बहुत मायने रखता है। किसी के लिए लैटिन बहुत अच्छा है, किसी के लिए पॉप अच्छा है, किसी के लिए रॉक अच्छा है। सो म्यूज़िक म्यूज़िक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। पर अक्सर मैं ये कहती हूँ कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। ये सुर क्या मिला देता है, भगवान मिला देता है, बहुत सारी बातें हैं, शेयर करती रहूंगी लेकिन साथ ही साथ आपको गीत भी सुनवाती रहूंगी। अरे भाई गीतों के बारे में बातें इतनी सारी कर ली, सरिता हाल चाल नहीं पूछा और अपने ना आने की वजह भी नहीं बताई। कल की भाई छुट्टी कर ली थी सरिता ने, छुट्टी इसलिए की थी कि एक चैरिटी फंक्शन में जाना था, क्राई एंड चिल्ड्रंस चैरिटी है और उनके प्रोग्राम में जाना था डिनर पे। वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई एंड चैरिटी के बारे में भी जानने की हमें मौका मिल गया, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई थी। एनीवे अब उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं आ सकी, दो काम एक साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी जगह शीना इस हॉट सीट पर थी और शीना का भी आपने भरपूर साथ निभाया और उन्हें पसंद भी किया। और अब सरिता है यहाँ पर पूछने लगी आपसे कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ बाय एनी चांस इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन चेयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शांत से मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते और थिरकते हुए ये गीत चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सभी का थैंक्स कर दूंगी जिन्हें मैंने अभी कहा नहीं कि आप मुझे मैसेजेस भेजिए और पहले से उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया कि वो मेरे साथ साथ हैं, मेरे आस पास हैं। थैंक यू एवर सो मच।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, we your £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 5 paisas today. And send money to India via SBI Yono app या branch में जाकर जून के end से पहले पहले अगर आप जाएंगे तो you can be into win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: राइट भी, आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 26 चल रहा है और मैच हो रहे हैं WINW 99 वेस्ट इंडीज वीमेन 1/5 विकेट्स एंड आज एक और मैच हुआ और जिसमें इंडियन वीमेन चूज टू बैट फर्स्ट. इंडियन वीमेन दे आर प्लेइंग विद साउथ अफ्रीका. तो 158 फॉर 7 रन्स बनाए हैं और अब साउथ अफ्रीका कितने बनाते हैं उसके लिए आपको इंतजार करना होगा. हम आपको अपडेट देते रहेंगे.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: So, ये तो सरिता ने आपको बता दिया कि गीतों की आज लड़ी पिरोई जा रही है और गीत वर्ड हर गीत में आ रहा है, हर गाने में सुनाया जा रहा है. सो आपको कौन सा ऐसा गीत याद आ रहा है? आप सोचते हैं कि सरिता की प्लेलिस्ट पर भी होगा? अगर नहीं है तो प्लीज़ शामिल कर लें, तो मुझे बता सकते हैं. नंबर आपका जाना पहचाना है. यू कैन नाउ ऑलवेज व्हाट्सएप मी.
3: वेलकम टू द जंगल.
4: फिल्म बिल्कुल फेक.
3: हमारी फिल्म आर्मी वाली और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: उषा खन्ना का कंपोज किया, सावन कुमार टक का लिखा गीत, बहुत मीनिंगफुल गाना और मुझे हमेशा बहुत पसंद आया. उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस गीत को ज़रूर इंजॉय किया. एंड बहुत से साथी लिख रहे हैं, मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ म्यूज़िक टू यू, इसके क्या मायने हैं. तो प्रतुला जी नॉर्मली मुझे मैसेज नहीं लिखती हैं, लिखा है कि नमस्कार सरिता जी, म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, आई ब्रीद एंड आई लिव म्यूज़िक. क्या बात है. और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की है गाने कि मुझे अब उनका नाम ढूंढना पड़ेगा क्या था. हाँ, मिल गया. ज्योति जसपाल कौर लिखती हैं, मेरे मितवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे, दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन एक गानी दो गीतों में से एक गीत मुझे चुनना है और मैं सोच रही हूँ कौन सा गीत शामिल करूँ, किस गीत को मैं प्लेलिस्ट से हटा दूँ. दो गीत हैं, इंतकाम का गीत तेरे साज का और दूसरा गीत है गीत मेरे होंठों को दे गया कोई, कभी अजनबी थे. इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. मीनवाइल और भी कुछ काम है ना, तो वो काम कर लेते हैं. राइट, अभी ये तो मैं आज अभी तक भूल गई कहना कि आज फादर्स डे भी है. सभी फादर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो. इफ़ यू आर ए फादर, या आप अपने फादर को विश कर रहे हैं या आपके बच्चे आपको विश कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे आपका प्यार हमेशा इसी तरह से बना रहे और आपका जो आशीर्वाद है बच्चों के साथ इसी तरह से हमेशा रहे. राइट, फादर्स डे ही से ही रिलेटेड एक जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. द फादर्स डे लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद द अंबाला स्वीट टू गिव अवे अ टिन बॉक्स ऑफ मिक्स्ड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल अवर स्टेशंस. सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर. ओके, सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर इन द स्टूडियो. व्हाट्सएप नंबर आपको आपका जाना पहचाना है एंड यू कुड विन विद अंबाला. विनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पिक अप देयर बॉक्स ऑफ मिठाई फ्रॉम देयर नियरेस्ट अंबाला स्टोर एंड अ लाइका रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन टच विद यू लेटर this week. Terms and conditions apply. One winner per household. Yeah, don't be greedy. The box of mithai is pre-selected and cannot be changed, and checked dietary informations before consuming. Visit ambala.co.uk for many other specials as well. So jaldi se mujhe WhatsApp karke bhej dijiye na. Likhenge kya? Just फादर, फादर लिखिएगा और भेज दीजिएगा अपनी एंट्री.
3: ये है Like a Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई सरिता ऐसे ही नहीं कहती है कि म्यूजिक इज माय डेली कंपेनियन माय प्रोफेशन एंड माय पैशन एज ए रेडियो प्रेजेंटर आई डोंट जस्ट प्ले म्यूजिक आई गेट टू शेयर मोमेंट्स मेमोरीज एंड इमोशंस विद every song. So, आपकी कोई emotion जुड़ी हो, कोई याद जुड़ी हो, तो बता सकते हैं. I witnessed how a single song can brighten a day. And आपकी memories को spark कर देता है और being people together जो आपके साथ हैं, उनकी याद दिलाता है. That's the magic of music and I'm truly grateful to be a part of this खूबसूरत सफर with you.
2: Sarita Sabharwal with your Weekend Classics.

चलिए कोई बात नहीं, हम प्ले कर देते हैं। कॉम्पिटिशन के चक्कर में मेरे साथियों ने इस बात का जवाब कम दिया है कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, लेकिन फादर फादर फादर फादर इतनी बरसात हो रही है मैं बता नहीं सकती स्टूडियो में। चलिए कोई बात नहीं, मैंने अपनी पसंद का गीत सुना दिया, दूसरा गीत देखेंगे नेक्स्ट आवर में।

0: जिनके भी दिल के करीब है ये गीत, उन सब के नाम किया. थैंक यू एवर सो मच फॉर योर लवली एंड एनकरेजिंग मैसेजेस. इसी तरह से मेरा साथ देते रहेगा. हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे टुडे. और मेरी कोशिश रहेगी अच्छे अच्छे गीतों से हमेशा आपका मनोरंजन करती रहूं.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है लाइका रेडियो. लाइका
3: रेडियो जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
4: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
5: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
6: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
7: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
6: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
3: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
8: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
9: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी,
8: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 2:30 अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा UK.
10: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk. UK and celebrate Father's Day in Ambala style.
11: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
12: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
11: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
14: Hey, boy!
15: Coast Guard, we're stuck.
16: Okay, help's on its way.
15: Hold on, mate.
17: Shoes, tide, phone.
18: Back before dark, love. Okay.
19: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
5: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
15: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
5: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
15: दिल तो टूट पे किया.
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
18: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म दिल एंड दूसरा गीत था लाल दुपट्टा मलमल का. एक चीज कॉमन रही दोनों गीतों में आवाजें थी अनुराधा पौडवाल एंड उदित नारायण की. एक 1990 की फिल्म थी और एक 1989 की फिल्म. राइट भी दिल का गीत मैंने इसलिए आप तक पहुंचाया आज क्योंकि ये फिल्म आज नहीं बल्कि कल 22nd ऑफ जून को रिलीज हुई थी. आनंद मिलन का संगीत था, समीर ने लिखे थे गीत एंड इंद्र कुमार जी ने बनाई थी ये फिल्म. माधुरी दीक्षित, आमिर खान, अनुपम खेर एंड साई जाफरी सभी की बहुत अच्छी भूमिकाएं थी. लेकिन आज के दिन जो फिल्में रिलीज हुई उनमें से किसी के भी गीत इतने पॉपुलर नहीं हुए थे इसलिए मैंने शामिल नहीं किए. कौन अपना कौन फराया, वहीदा रहमान एंड जॉनी वॉकर ने इस फिल्म में काम किया था. 1963 की फिल्म थी. जबरदस्त वॉज रिलीज टूडे एज वेल इन 1985. आर डी बर्मन का संगीत, नासिर हुसैन साहब ने बनाई थी ये फिल्म. एंड इज्जत वॉज अनदर फिल्म 21st of June 1991 में ये रिलीज हुई थी. जैकी श्रॉफ और संगीता बिजलानी ने इस फिल्म में काम किया था. अनु मलिक का था संगीत. प्रेम कैदी वॉज ऑल्सो रिलीज टूडे 21 जून 1991 में. करिश इसमें थे हरीश एंड करिश्मा कपूर. के राव ने बनाई थी ये फिल्म और आनंद मिलिंद का था संगीत. लेकिन इनमें से किसी का संगीत मैं शामिल आज के प्रोग्राम में नहीं कर पाई. इंस्टेड कल जो फिल्म रिलीज हुई उनमें एक फिल्म है दिल और कल ही के दिल 1990 में ये फिल्म रिलीज हुई थी 22nd ऑफ जून को. एंड घायल वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन 22nd of June 1990 जिसका गीत मैं नेक्स्ट आवर में जरूर शामिल करूंगी. हैप्पी फादर Day to all the fathers who are celebrating with their children today. और किसी के बच्चे दूर भी हैं तो वहाँ से भी messages मिल रहे होंगे उन्हें ज़रूर. And जिस तरह से भी आप celebrate कर रहे हैं, lunch के लिए जा रहे गए थे या फिर dinner के लिए तैयारी हो रही है तो खूब enjoy कीजिएगा. आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, माँ बाप के साथ bond रहे बच्चों का, ये सबसे बड़ी बात होती है.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भई अगर आज आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो 1 British sterling pound can get you 124 rupees and 5 paisas and you can send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: भई आज इक्वाडोर एंड क्यूरियाको में मैच हुआ था एंड उसके बाद ग्रुप एफ का मैच था टूनिसिया एंड जापान में एंड जापान वन द मैच 4-0 से. एंड स्पेन एंड सऊदी अरेबिया के बीच मैच हुआ एंड स्पेन वन विद 1-1. ग्रुप डी का मैच है बेल्जियम एंड ईरान के बीच, शाम 8 बजे शुरू होगा. और आज 11 बजे है यूरुग्वाय एंड कैबो वर्डे के बीच में मैच जो कि रात को 11 बजे शुरू होगा.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
3: Leica Radio. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी
4: नहीं, तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 एसिस्टेंट स्ट्रीट LE1 2JU या रोलेट हिल LE5 4UN।
3: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
5: वेलकम टू द जंगल।
3: फिल्म बिल्कुल फेक,
5: हमारे फिल्म आर्मी वाली,
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
5: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में?
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala.
12: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
13: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
12: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
13: Also explore 2026 cruises
12: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
14: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
15: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.

0: आप सोचते हैं डैडी और सन में ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, इसी तरह से कूल कूल कूल वाला होना चाहिए. किस किस का ऐसा रिश्ता है वेरी कूल वाला, तो मुझे बता सकते हैं. और आज फादर्स डे पर हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो. फादर्स डे ये गाना स्पेशली मैंने डेडिकेट कर दिया सभी फादर्स को. फादर्स जो जिंदगी भर हमारे लिए साइलेंटली एज ए वॉरियर काम करते हैं. हमारे पापा कहते हैं ना, माँ प्यार बोल कर जताती है और पापा प्यार करके दिखाते हैं. ऐसा ही है आपके जीवन में भी, तो ज़रूर बताइएगा. उनकी डांट भी हमें प्यार प्यारी लगती है. और बस वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है ना उनके उनके जो डांट होती है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है. और उनकी थकान कभी उनके चेहरे पर नहीं आती है, सिर्फ उनके सपने में दिखती है. और वो सपने किसके होते हैं, हमारे सपने देखते हैं. हमारे माँ बाप दोनों देखते हैं लेकिन फादर ज़्यादा. आज फादर्स डे पर एक बहुत ही प्यारा सा फैक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दुनिया का पहला फादर्स डे 1910 में अमेरिका के स्पोकन शहर में मनाया गया था. और इस दिन का आइडिया एक बेटी सुनारा स्मार्ट डॉड ने दिया था. और अपने सिंगल फादर के सम्मान में बहुत ही उन्होंने ये उनको ट्रिब्यूट दी थी या उनको सराहा था कि मेरे पापा इज द ग्रेट. एंड दैट सॉन्ग इज कमिंग नेक्स्ट थोड़ी देर में. एक और बात है कि रिसर्च कहती है पापा के साथ मजबूत रिश्ता रखने वाले बच्चे जिंदगी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. सो अपने पापा के साथ बॉन्ड बनाए जाएं, बनाए रखिएगा हमेशा अपना रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा रखिएगा. शायद इसीलिए पापा हम सब के लिए एक इनविजिबल शील्ड की तरह होते हैं. तो प्यार मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पापा को भी जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी पापास को जो अपने बच्चों की दिलो जान से एक बैकबोन की तरह खड़े रहते हैं उनकी ज़िंदगी में. सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माई जितने भी इस वक्त हमारे पापा सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ.
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भी अब आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है. और कॉम्पिटिशन में मैंने आपसे लास्ट आवर में भी कहा था कि आपको फादर लिखकर भेजना है. सो दिस फादर्स डे लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद अम्बाला स्वीट टू गिव अवे अ टिन बॉक्स ऑफ मिक्स्ड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल आवर स्टेशन. एंड सिंपली सेंड इन द वर्ल्ड फादर टू द स्टूडियो व्हाट्सएप एंड यू कुड विन with Ambala later on this week. And TNC supplies one winner per household. The box of Mithai is pre-selected and cannot be changed. So check your dietary informations before consuming and visit ambala.co.uk for many other special offers. So last hour ke jo winner hai unka naam bhi main announce karungi aur is hour ke jo winner hai unka naam next hour mein अनाउंस कर दिया जाएगा. सो आप इसी तरह से बने रहें. और आप जानते हैं ना कि मैच चल रहा है. और किसका मैच चल रहा है आजकल, आईसीसी का T20 का विमेंस मैच चल रहे हैं. और हमें हमारे कमल प्रभाकर जी अपडेट देते हैं. सो मैं ट्राई करती हूँ कि कमल प्रभाकर जी मुझसे बात कर सकें. तो आइए इनका ज़रा नंबर मिला दें, देखें कि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं. कम ऑन कमल प्रभाकर जी. हेलो कमल जी. हेलो कमल जी, आप मेरे साथ हैं? हेलो कमल जी.
3: ओ
0: यस यस, मैंने कहा शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है. सो
3: वेरी क्लियर
0: पहुंच रही है. ओके, तो आज के मैच के बारे में हमें बताइए कि क्या चल रहा है.
3: बल सरिता जी, सुबह

0: तो एक बहुत अच्छा मैच हुआ था, श्रीलंका 98 ओनली स्कोर्ड इन 19.4 ओवर्स में, और वेस्ट इंडीज जैसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज इजी जीत जाएंगे, बट इतना डिफिकल्ट कर दिया वो लोग ने। श्रीलंका बॉल्ड वेल, फील्डेड वेल, रिस्ट्रिक्टेड वेस्ट इंडीज 99 for 5 16 ओवर्स में,
1: इट वॉज
0: वेरी टाइट गेम।
1: जी जी,
0: और उससे बड़ा मैच चल रहा है, वेरी एक्साइटिंग,
2: विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक रेडियो,
0: गेम इज इवन हॉटर नाउ। इंडिया वर रिस्ट्रिक्टेड टू 158 फॉर 7 इन 20 ओवर्स।
1: जी जी,
0: और साउथ अफ्रीका, यू नो दे आर अ ग्रेट टीम एज वेल, 122 फॉर 2, और दे नीड ओनली 37 रन इन 24 बॉल्स। So it is going to be touch and go, but the finish is going to be fantastic.
1: Wow,
0: it's going to be
1: wow.
0: great.
1: Yes, I can see on my screen as well. 16 overs ho chuke hain South Africa ke, and 37 runs they need in 24 balls. So let's see ki kya hota hai final. रिजल्ट क्या निकलता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। ये थे हमारे कमल प्रभाकर जी।
2: You buy TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics, and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Sarita Summer.

0: सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
1: वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल गाने, ऐसे गीत दिखे ना संगीत। आज तो वैसे भी वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो ऐसे गाने जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि कितने कितने सारे गीत हैं। संगीत के बिना हमारा जीवन कितना सूना है। और उम्मीद करती हूँ आपने इस गीत को पसंद किया। राइट, बता दें आपको कि लेटेस्ट टाइटल है साउथ एशियन विमेन इन स्पोर्ट्स, दीप राजा इज द होस्ट एंड ब्रेकिंग बैरियर्स इन मेल डोमिनेटिंग फील्ड, व्हाई रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। एंड लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो अवेलेबल, इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: All the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
8: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
9: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
8: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
10: दुल्हन के लिए मेकअप।
8: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
14: Khakra क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 01163251100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में। कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
6: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: Father's Day special is sponsored by Jamin Foods.
10: Jamin Foods ke ethnic food varieties, jahan hai namkeen, khakra, chikki, son papri, mango pulp aur bahut kuch. Available at your nearest ethnic grocery stores.
17: Jamin Foods, the ethnic taste of India.
18: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: भेज की इतनी फरमाइश मुझ तक पहुंची थी, अब मुझे इतने सारे मैसेजेस में वो मैसेज नहीं मिल रहा है जिन्होंने इस गीत की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाई थी. राइट. और राजू पंचाल जी, आपका मैसेज मिला. आपने लिखा है कि आई वांट टू विश माय वेरी गुड चाइल्डहुड फ्रेंड 75th बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रॉम जयदेव. चाइल्डहुड फ्रेंड जयदेव वी सोनी जी को बहुत बहुत बधाई हो. फ्रॉम हिज सिस्टर लता एंड फ्रेंड्स अशोक दतानी, देवेंद्र बुरखार्तिया एंड रमनीक शाह, दिनेश पनखानिया एंड मायसेल्फ राजू पंचाल. सभी फ्रेंड्स की तरफ से और फैमिली की तरफ से जयदेव जी आपके स्पेशल बर्थडे पर आपको स्पेशल बधाई पहुंच रही है. और हमारी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई जयदेव वी सोनी जी.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकते हैं 125 रुपीस एंड 10 पैसा इन इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस 368.23, इन श्रीलंकन रुपीस 441.80, बांग्लादेशी टका 162.61, अफगानी 85.59 एंड US डॉलर्स 1.32.
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate hai market mein 101 pounds and 5 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call
0: 0116-266-477.
2: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और वही हमारे अंबाला स्वीट्स के दो विनर्स का नाम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ. लास्ट आवर के विनर हैं शिबानी दास एंड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हमारी टीम इन्फॉर्म करेगी या अम्बाला के स्टाफ से की तरफ से. एंड ओम प्रकाश लाल जी आप हैं इस आवर के हमारे विनर, दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. वन विनर पर हाउस होल्ड है, तो अगर आप जीत चुके हैं तो प्लीज़ आप दोबारा से नेक्स्ट आवर में नहीं फादर लिख कर भेजिएगा. एंड आपको जो नियरेस्ट अम्बाला है वहाँ से जाकर अपने बॉक्स कलेक्ट करना होगा. लाइका रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन टच विद यू दिस वीक.
3: जी टीवी HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
4: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
5: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
6: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
7: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
6: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
3: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
8: फादर सन नो बॉन्ड जेटलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे.
9: अंकल समय पहला थी आवाज छो.
10: आवाज એટલે કેવા.
8: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर.
10: मारो बाप बनवानी कोशिश करत तू बुद्धि वेची आवे छे तू. अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे के जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे.
8: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
10: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर.
11: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Ambala style. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.

0: अभी बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक वेरी पेपी एंड इसका मिजाज थोड़ा ठंडा था एंड स्लो गाना था लेकिन बहुत मीठा गाना था। रफ़ी साहब का साथ किस फीमेल आर्टिस्ट ने दिया, क्या आप जानते हैं उनकी आवाज़ को, पहचानते हैं? अगर हाँ तो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। फिल्म रास से चुना था इस गीत को एंड ये फिल्म आज के दिन रिलीज़ नहीं हुई थी, वैसे ही बता रही हूँ कि 5th May 1967 में आई थी ये फिल्म। और फिल्म रविंद्र दवे जी ने डायरेक्ट की थी एंड प्रोड्यूस बाय जी पी सिप्पी एंड सिप्पी फिल्म्स। द स्टोरी वाज रिटन बाय सी जे पवरी एंड फिल्म स्टार्ड राजेश खन्ना एंड बबीता, आईएस जोहर एंड कमल कपूर और भी आशीष सेन वगैरह भी थे। एंड इस फिल्म का संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, लेकिन दिस सॉन्ग इज ऑल्सो लो लेकिन बहुत मीठा सा गीत है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पसंद को पसंद किया। दिल संभाले संभलता नहीं, वो भी मैं काफ़ी दफ़ा प्ले करती हूँ गाना। एंड दूसरा अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, अकेले हैं कहाँ चले आओ कहाँ हो तुम, वो गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था। कहा जाता है कि दिस वॉज मैंट टू बी द डेब्यू फिल्म फॉर बोथ राजेश खन्ना एंड बबीता, बट ड्यू टू डिलेज दिस फिल्म वॉज रिलीज a year after their debut and in other films and then Rajesh Khanna's performance in this film was very appreciated, critically appreciated. And Ghayal maine last hour mein bhi bataya ki ye film कल यानी 22nd of June को रिलीज़ हुई थी 1990। विजेता फिल्म्स की ये फिल्म थी एंड डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। स्क्रीन प्ले भी उन्हीं ने लिखा था। इस फिल्म में धर्मेंद्र प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र जी ने। सनी देओल, मीनाक्षी सिसोदिया, अमरीश पुरी, ओम पुरी, कुलभूषण खरवंदा, शफी मांदा, मौसमी चटर्जी, बहुत सारे एक्टर्स थे। हाउ कैन आई फॉरगेट इन स्पेशल अपेयरेंस राज बब्बर भी थे एंड सुदेश पैरी as well। फिल्म का संगीत बप्पी लहरी साहब का था और ये गाना तो काफ़ी मशहूर हुआ, तो अब वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर यस लंबाडा ट्यून हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई और उम्मीद करती हूँ इस गीत को आपने इन्जॉय भी किया। और अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ा दें और ये जान लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 5 paisas. Send money to India via SBI Yono or by branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, by football matches chal rahe hain, aap sabhi jante hain achhi tarah se, aur main aapko jaldi se bata dun ki aaj sham ko match, well, ek match ho chuka hai Spain and Saudi Arabia ke beech mein, 4-0 se Spain win kiya hai and group G ka Belgium and Iran ke beech match होने वाला है आज शाम 8 बजे एंड यूरुग्वे एंड केबो वर्डे में मैच होगा रात को 11 बजे।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Okay. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
6: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
7: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
8: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
9: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
8: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
5: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
12: इन रियल एस्टेट। Location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
14: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji
13: Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasiyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832 eventbrite.co.uk. Sakhna rejo, husband ji.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
18: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
17: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
19: Punjab di biggest tunes, non

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हरिहरन जी की आवाज शामिल हुई और ये गीत मैं फादर्स डे के मौके पर भी सभी अपने लिसनर्स के नाम करती हूँ जो फादर्स डे मना रहे हैं. पिता, पापा, डैड, जो भी कहिए, आपके प्यार दर्शन, प्यार से, मार्गदर्शन से और त्याग के लिए दिल से हम धन्यवाद करते हैं. और आप हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं, पिता. यस, एंड इनके संस्कार, आपकी, इनके जो सीख होती है, आपका प्यार सबसे बड़ी हमारी पूंजी बन जाती है. ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ रखें. ये दुआ, ये प्रार्थना सभी की तरफ से मैं उनके फादर्स के लिए करती हूँ, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए. हर मुश्किल राह को आसान बनाने वाले होते हैं पिता, हर सपने को हौसला देने वाले होते हैं पिता, और सबसे बड़े सहारा और सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं. पिता वो छाया है जो धूप में भी सुकून देती है, वो शक्ति है जो चुनौती से लड़ना सिखाती है. पिता का प्यार अनमोल होता है और उनका साथ सबसे खास होता है. उनके आशीर्वाद से जीवन समर जाता है और ऐसे पिता को हमारा शत शत प्रणाम है. आप सभी की तरफ से मैंने आपके फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कह दिया और कहना भी चाहूँगी. और इस फादर्स डे के शुभ अवसर पर लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद अंबाला स्वीट्स टू गिव अवे अ टिन बॉक्स ऑफ मिक्स्ड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल ऑफ अवर स्टेशंस. सो सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर. जिन्होंने लास्ट आवर, टू आवर्स में हिस्सा लिया, प्लीज़ आप मत एंटर कीजिएगा कंपटीशन. और जिन्होंने नहीं दी अभी तक मैसेजेस भेजे हैं तो जल्दी से भेज दीजिएगा. सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर टू द स्टूडियो व्हाट्सएप एंड यू कुड विन विद अंबाला. विनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पिक अप देयर बॉक्स ऑफ मिठाई फ्रॉम द नियरेस्ट अंबाला स्टोर. A Leica representative will be in touch with you later this week, not today, later this week. And terms and conditions apply. One winner per household. अगर आपने किसी और प्रोग्राम में भी जीत लिया है, आपका नाम अनाउंस हो गया और आपने फिर से दोबारा उसी एड्रेस पर और उसी नाम पर दोबारा से अप्लाई किया है या व्हाट्सएप भेजा, तो आपके विन भी अगर गलती से हो गए तो आपको नहीं मिलेगा. एंड check your dietary information before consuming the product. Visit ambala.co.uk for many other specials. Like a
1: radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Suman Kalyanpur ki awaaz mujhe bahut pasand hai. Bahut dino ke ye geet play nahi hua, to kyun na aaj play karte? Tum agar aa sako to aa jao, phir na kehna ki hame bulaya nahi.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लाइका रेडियो. जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए लाइका गोल्ड सुन रहे हैं या लाइका रेडियो जहाँ भी, मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में, जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत है. और आपको एक खबर देनी है, और वो ये कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल्स. एक्सप्लोर बीच ब्रेक, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. विजिट साउथ हॉल ट्रेवल or call on 0208-574-8410.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: Aapke bhi deha mein jism se aa jaati hai.

0: holiday breaks are brought to you by South All Travel.
1: भाई इनका मैसेज मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद देम ऑन 0208574 8410 और विजिट साउथ ऑल ट्रेवल.

0: भीगी रात से चुना था इस गीत को। एक बार फिर से सुमन कल्याण भुजी की आवाज शामिल थी और साथ तेरे थे मोहम्मद रफी साहब।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट करेंसी रेट आपको जल्दी से बता दें, एक पाउंड के बदले आज इस वक्त आपको मिल सकते हैं कितने पैसे, 125 रुपीस एंड 1 पैसा, पाकिस्तानी रुपीस 368.5, श्रीलंकन रुपी 441.57, बांग्लादेशी टका 162.52 एंड 85.57, अफगानिस US डॉलर्स 1.32।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's 101 pounds and 5 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

भाई मैं जल्दी से विनर का नाम बता दूं अंबाला स्वीट्स का, किसने जीता है इस आवर में. मीना फ्रॉम क्रॉयडन, अवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड यू विल हैव टू गो एंड कलेक्ट योर बॉक्स, स्वीट बॉक्स फ्रॉम दैट नियरेस्ट ब्रांच एज वेल. सो ये गीत भी किसी की पसंद थी, किसकी पसंद मैं नहीं.

भाई मैं अलविदा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि मेरे जाने का वक्त है। अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कर बात है। अगले वीकेंड फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। और मेरे बाद इस हॉट सीट पर आ रहे हैं वन एंड ओनली सैंडी शाह अपना विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर, एंड उसके बाद फिर गोल्ड नाइट्स आप प्रोग्राम जरूर सुनेंगे। और दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आ रहे हैं नाव मैसा, उनका भी साथ दीजिएगा आफ्टर 7 o'clock। मेरी तरफ से बाय, यू हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। जितना भी बचा फादर्स डे मनाए, वर्ल्ड्स म्यूजिक डे भी आज, तो वो भी मनाते रहिए। बाय, टेक केयर।

0: a very special message going out from Shalini to her husband Vishal on Father's Day. She says, "Happy Father's Day to my partner in parenting and to my best friend. A very happy Father's Day to all the fathers tuned into the show this evening. Yes, agar aapko bhi koi special message bhejni hai, then do send it out to our studio WhatsApp number.
1: It's competition time.
0: Yes, it is time now for the Ambala competition jiska aap intezaar kar rahe the, hai na? So what is this competition all about? Well, abhi batati hu that this Father's Day, Lyca Radio Network has teamed up with Ambala Sweets to give away a tin box of mixed mithai every hour across all our stations. All you gotta do is simply send in the word father to our studio WhatsApp number and you could win this Ambala hamper. Ji haan, बड़ा ही सिंपल है एंड आपने आप में से जो भी विनर होगा यू विल बी रिक्वायर्ड टू पिक अप योर बॉक्स ऑफ मिठाई फ्रॉम द नियरेस्ट अंबाला स्टोर एंड ऑफ कोर्स हम आपको कांटेक्ट करेंगे लेटर ऑन इन दिस वीक एज वेल. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. रिमेंबर सिर्फ एक ही विनर होगा पर हाउस होल्ड एंड दिस इज अ बॉक्स ऑफ मिठाई विच इज प्री सेलेक्टेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. सो यू कैन विजिट ambala.co.uk फॉर मेनी अदर स्पेशल ऑफर्स. बट for now, if you want to win this special mithai ka dabba, then send in the word a father with your name to our studio WhatsApp number.
1: WhatsApp Lyca Radio Midlands now on 07404 793 719. Artist of the Week is brought to you by our new podcast Lyca Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Dates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Your Sunday evenings with Mesa. Proudly sponsored by ticketstoindia.co.uk. For the best rates, book online or call 020 8518 9100. Bringing India closer.
1: Welcome to the jungle.
2: Film? Bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.

0: कायजा। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड आई थिंक म्यूजिक डेफिनेटली एक ऐसी चीज है विच हैज द एबिलिटी टू हील, टू यूनाइट एंड टू इंस्पायर, इज़न्ट इट? चाहे वो हार्ट ब्रेक वाले गाने हो that give you a you know medium of emotional release, yeah, songs which are all about Sufism, yeah, spiritual healing, yeah, for songs which take you back in time into nostalgia. Music always has a deep connection with our soul. So gaiye gaija aur Laika Radio Network jiska rishta bhi music se juda hai hame sunte rahiye, hamara saath dete rahiye.
1: Good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: And yes, अगर आपको सूफी टाइप के गाने पसंद है, then don't miss a soulful journey with singer Hari Haran ji, who is returning to the UK with a special one-off event on Saturday, the 4th of July at Royal Festival Hall. So get your tickets now at southbankcentre.co.uk. Your exclusive radio partners are Laika Radio Network. Laika
1: Radio. Join the dots with Mesa.
3: Laika Radio.
0: And of course, join the dots game na khelein. Aise kaise ho sakta hai? It's time now to give out the first clue to join the dots. Ye ek aisi game hai jisme main aapko teen clues deti hoon about a Bollywood film. और आपको इन क्लूज को ज्वाइन करके मुझे फिल्म का नाम बताना होता है. अगर आपको पहले ही क्लू में ये जवाब आ जाए तो वेट मत कीजिएगा. यू हैव टू सेंड इन योर आंसर्स टू आवर स्टूडियो व्हाट्सएप नंबर इमीडिएटली, ठीक है? दैट्स योर चैलेंज, कम से कम क्लूज में जवाब पूछना है. तो चलिए पहला क्लू देखते हैं क्या है. आज की जो मूवी है ना, 2007 में रिलीज हुई एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी. इस फिल्म में है बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स, जिन्हें हम ही मैन के नाम से भी जानते हैं. एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही अपियर्ड ऑन द बिग स्क्रीन टुगेदर विथ हिज टू रियल लाइफ सन्स इन दिस मूवी, हु आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स. डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई विच मूवी दिस इज? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट फादर्स डे टुडे, सो इट इज अ मूवी अबाउट इमोशनल फैमिली रिलेशंस. 2007 में रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें हमारे वेरी वेरी पॉपुलर ही मैन हैं, और इट इज द फर्स्ट टाइम ही अपीयर्ड ऑन द बिग स्क्रीन टुगेदर विद हिज टू रियल लाइफ सन्स हु आर पॉपुलर एक्टर्स एज वेल. इफ यू वांट टू गिव इट अ गेस, सेंड इन योर आंसर्स टू दिस व्हाट्सएप नंबर.
1: WhatsApp Laika Radio Midlands now on 07404 793 719. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Your currency updates, 1 British pound can get you up to 125.1 Indian rupees, 368 Pakistani rupees, 440.1 Sri Lankan rupees, 162.2 Bangladeshi taka, 85 Afghani and 1.32 US dollars.
3: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
1: WhatsApp Laika Radio Midlands now on 07404 793 719.
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: show from Dhoom 3. It was Kamli and Chand Sifarish from Fana.
1: Laika Radio.
0: You're tuning into the Sunday Wrap with me, Mesa, on Laika Radio, 1450 AM in Greater London, DAB Digital Radio across the Midlands, Google Home, LaikaRadio.com, and the Laika Radio mobile app for aap mujhe sunte hain. The show is brought to you by tickets2india.co.uk, एक ऐसी travel website जहां आपको हमेशा मिलेंगे great offers on flights to India and other worldwide destinations. Thank you so much for all your lovely messages. Especially जहां आपने Father's Day को celebrate किया है. There are a few messages जो मैं पढ़ना चाहती हूँ. The first one is from Noor, who's listening in from London. वो अपने father Yasin के लिए कहते हैं that Dad, you are my best friend for life. And इनके father Karachi में हैं और ये message उन तक वो Laika Radio के through पहुंचाना चाहते हैं. That's so sweet of you, Noor. And then we have a message from Sumit, Sonali, Kian, Rizan, and Meera who are wishing Sanjay a very, very happy Father's Day. That's so sweet. And a very emotional message coming in from Major Rehman. Wo kehte hain, it's been 30 years, but not a Father's Day goes by that I don't think of you. Your lessons still guide me. Your laughter still echoes in my best memories. And your love still feels close. Missing you today and always. Happy Father's Day in heaven. That was really emotional. If you have a message to share on Father's Day today, then send it across to our studio WhatsApp number.
1: Catch me if you can with Mesa.
2: Laika Radio.
0: And yes, in the last hour of my show, I always play another game with you, which is called Catch Me If You Can. जिसमें मैं एक, you know, आपकी जो lyrical knowledge है, वो टेस्ट करती हूँ. मैं आपको तीन सॉन्ग लाइन सुनाती हूँ और उनमें से किसी एक गाने में होती है गड़बड़ ऑफ वर्ड्स ऑफ लिरिक्स और आपको पहचानना है कि किस गाने में हुई है ये गड़बड़. सो लेट्स लिसन टू द थ्री सॉन्ग्स. फर्स्ट सॉन्ग इज अखियां मिलाऊं कभी हाय शर्माऊं क्या तूने किया जादू फ्रॉम राजा. दूसरा गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी. और तीसरा गाना है साजन जी घर आए फ्रॉम कुछ कुछ होता है. अभी किसी एक गाने में ना मैंने एक गड़बड़ की है लिरिक्स की, आपको वो पहचानना है. आई एम गोना रिपीट इट अगेन फॉर यू. पहला गाना है अखियां मिलाऊं कभी हाय शर्माऊं क्या तूने किया जादू. दूसरा गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके और तीसरा गाना साजन जी घर आए फ्रॉम कुछ कुछ होता है. बताइए किस गाने में हुई है गड़बड़ ऑन दिस नंबर.
1: WhatsApp Laika Radio Midlands now on 07404-793-719.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
1: हमारी film army वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel. At all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
13: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
13: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
14: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100. और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: Love across the Midlands. This is Leica Radio.